0: safety guaranteed with nripage.com. From businesses to non-profits, NRI Page is the place to be. For more information, visit nripage.com or contact Gopal Ponnangi at 214-868-7538.
1: तत्र खलु ईमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति अनि आयुर्वेदं चेप्तुंदि अंटे आहारं अनेदि केवलं फुड् कादु इट्स अ पर्फेक्ट बैलेंस देशकालमान परिस्थितुलु प्रकृति दानि पडिंचे विधानं इवन्नी कूडा चोडवुतायि अला चूस्ते मन रूट्स फार्मिंग लो उन्नायि बट वी मूव्ड ऑन स्टिल मन मनसुलु पच्चनि पंट पोलाल्लो चिक्कुकुपोयि उन्नायि सो लेट्स गेट बैक टू अवर रूट्स विद वीवीएफ एक्टेक आईएनसी मल्लेमारी फार्म्स बिलीव्स दैट फार्मिंग इज नॉट बैकवर्ड इट इज द फ्यूचर वीवीएफ एक्टेक आईएनसी is your calling for farming. Palembari Farms. Visit vvfagtech.com or call 848-244-0213.